आई वन इच्छारी है वच्चे आई आले आते पो ये वाला खानी हो ये आले आते पो हुन वागुलू अनि का पपाया कोमो वाला अच्छो ओलो चावा हुँ वे वो आ कोमो No chico le provincia a Wampola, na mi wa misma.